0: आवाज़ ताजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज़ ताजिक 4 बजे दुशंबे नगर और 4:30 बजे भारतीय समय के अनुसार 1 घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियां आठ भाषाओं ताजिकी, दारी, फारसी, रूसी, उज़्बेकी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।
1: से प्यारे सुनने वालों, रेडियो आवाज़ ताजिक की हिंदी भाषा की जारी है और आपका स्वागत है।

हमारे प्रसारण में आप सुन सकते हैं स्थायी और विदेशी समाचार, ताजिकिस्तान के नीतिक सांस्कृतिक सामाजिक जीवन के बारे में दिलचस्प पहलुओं विश्लेषण विशेषज्ञों से बातचीत। आज की जिम्मेदारियों में इस प्रोग्राम के अदीति रामजा और प्रोड्यूसर अब मंसूर इस्माइल आपका समाचार भाग में स्वागत करते हैं और अब मुख्य खबरों से शुरू करेंगे।

उपयोगी रिपोर्ट और बातचीत हर दिन रेडियो आवाज ताजिक पर हमारे साथ जुड़े रहे और संस्कृति साहित्य और रोजमर्रा की जिंदगी के अहम विषयों से अपडेट रहें। रेडियो आवाज ताजिक दिलों की आवाज। प्रिय श्रोताओं, मैं आपका स्वागत करती हूं। कार्यक्रम के इस भाग में हम क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने में तजिकिस्तान और तजिकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति स्पष्टीकरण भूमिका के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्ताव करेंगे। हमारे साथ रहे। पूरे इंसानी इतिहास में शांति और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाने के लिए कई देशों को मुश्किल और लड़ाई झगड़े वाले दौर से गुजरता पड़ा है। इस प्रोसेस में अक्सर माइग्रेंट्स के साथ संघर्ष, अंदरूनी झगड़े और अलग अलग हितों के टकराव भी शामिल रहे हैं। आज की दुनिया के हालात तो तेजी से बदल रहे हैं और जिनमें सुपर पावर और इलाके के देशों के फायदे पूरे हो रहे हैं उनमें शांति और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मुद्दा देशों के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए मुख्य वजहों में से एक है। तजिकिस्तान गणराज्य में राज्य बनाने का अनुभव दिखाता है कि शांति और राष्ट्रीय एकता पाने का प्रोसेस पॉलिटिकल इच्छा शक्ति, लोगों की समाज और समझदार लीडरशिप के मेल का नतीजा है। ये अनुभव साबित करता है कि सिर्फ कंस्ट्रक्टिव बातचीत और पॉलिटिकल बातचीत से ही गंभीर अंदरूनी संकटों से निपटा जा सकता है और टिकाऊ राज्य के नींव को मजबूत किया जा सकता है। इस प्रोसेस के एक जरूरी बात यह है कि ताजिक समाज एक सेंसिटिव ऐतिहासिक मोड़ पर नेशनल वैल्यूज और शांति पसंद परंपराओं पर भरोसा करके सिविल वॉर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा पाया। ये कामयाबी न सिर्फ नेशनल महत्व की थी बल्कि इसे इंटरनेशनल लेवल पर भी पॉलिटिकल जगरों को सुलझाने के लिए सफल उदाहरण के तौर पर पहचाना गया। शांति और राष्ट्रीय एकता पाने में तजिकिस्तान गणराज्य का अनुभव दिखाता है कि सही डिप्लोमेसी, राजनीतिक बातचीत और राष्ट्रीय समझदारी किसी देश को बर्बादी के कागार से खचा सकती है। ये प्रोसेस खासकर अफगानिस्तान में लंबे समय से चली आ रही अस्थिरता की तुलना में ये साफ करता है कि आपसी समाज की कमी और लगातार संघर्ष दशकों तक किसी देश के विकास में रुकावट डाल सकते हैं। इसलिए शांति सिर्फ एक राष्ट्रीय उपलब्धि ही नहीं है बल्कि एक सफल इंटरनेशनल उदाहरण भी है जो स्थिरता और तरक्की पक्का करने में बातचीत और सामुदायिक एकता के महत्व को दिखाता है। असल में एक मोर्डन ताजिक देश बनाने में तजिकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति मुहम्मद इमाली रहमो का रोल सच में बहुत बड़ा और ऐतिहासिक है। इस शानदार पर्सनैलिटी के लगातार कोशिशों और कड़ी मेहनत की वजह से ही तजिकिस्तान टूटने के खतरे से बच पाया। ताजिक देश का शांति पसंद मिशन इतिहास के सबसे मुश्किल दौर और अलग अलग सभ्यताओं के टकराव के दौरान भी हमेशा देश की स्थिरता और शांति के लिए मददगार रहा है। अनुभव बताता है कि लड़ाई बाहर करना आसान है लेकिन शांति वापस लाना बहुत मुश्किल है। ऐसी ही स्थिति अफगानिस्तान में भी देखी जा सकती है जो दशकों से हथियारों की लड़ाई से जूझ रहा है।

आप हमारे वार्ता कार्यक्रम से जुड़े हैं। इस कार्यक्रम में हम दीन के महत्वपूर्ण मुद्दों, संस्कृति, समाज और रोजमर्रा की जिंदगी पर रोचक विश्लेषण और चर्चा प्रस्तुत करते हैं। हमारे साथ बने रहें। उपयोगी वार्ताएं और ताज़ा खबरें हमेशा हमारे प्रसारण में उपलब्ध है। प्यारे सुनने वालों, याद दिलाना कि आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ ताजिक, और अभी हमने तय किया कि आपको एक ताजिक महान व्यक्ति निसोर मोहम्मद के कार्यवाही के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ रहे। वीरों का मातृभूमि के साथ आध्यात्मिक संबंध राष्ट्रीय नेता की राष्ट्रीय स्मृति के संरक्षण संबंधी नीति में परिलक्षित होता है। प्रतीकात्मक मिट्टी को लाना, इतिहास के परिमित समान पीढ़ियों की निरंतरता और राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था की विरासत के प्रतीक के रूप में मूल्यांकित किया जाता है। ये पहल ऐतिहासिक स्मृति के पूर्ण जीवन, राष्ट्र के समर्पित पुत्रों के प्रति सम्मान तथा राष्ट्रीय आत्म चेतना को सुदृढ़ करने की दिशा में राज्य की निरंतर और सुनियोजित नीति के कड़ी के रूप में आम की जाती है। तजकिस्तान के नायकों के समाधि स्थलों से प्रतीकात्मक मिति लाया जाना इस बात का संकेत है कि आधुनिक तजकिस्तान की राज्य निर्माण नीति में राष्ट्रीय स्मृति का संरक्षण केवल एक प्रतीकात्मक कार्य नहीं, बल्कि देशभक्ति के विश्व दृष्टि के निर्माण, पीढ़ियों के बीच संबंधों को मजबूत करने तथा ऐतिहासिक न्याय की पूर्ण स्थापना का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। नुसरतुल्लाह मखसूम और शिरीनशो शोह तैमूर उन प्रमुख व्यक्तियों में शामिल है जिन्होंने सन 1920-1930 के दशक में जो ताजिक राज्य व्यवस्था के निर्माण, राष्ट्रीय हितों की रक्षा और ताजिक राष्ट्रीय चेतना के विकास के लिए अत्यंत कठिन ऐतिहासिक काल था, दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय दिया। साथ ही निसोर मोहम्मद ने ताजिक राष्ट्र के एक योग्या और सम्मानित पुत्र के रूप में देश में सांस्कृतिक विकास और शिक्षा प्रसार की बुनियाद को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वीरों नुसरतुल्लाह मखसूम, शिरीनशो शोह तैमूर और निसोर मोहम्मद के प्रतीकात्मक मिति को मातृभूमि में लाना राष्ट्रपति मामाहिम इमाली रामों की आंतरिक और विदेश नीति के एक नैतिक एवं ऐतिहासिक उपलब्धि माना जाता है। ये घटना ने ये सिद्ध कर दिया कि तजकिस्तान अपने त्यागी और समर्पित पुत्रों को कभी नहीं भूलता और उनकी मिति उस मातृभूमि गोद में जिसके निर्माण के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया था सदा के लिए शांति प्राप्त करती है। नुसरतुल्लाह मखसूम, शिरीनशो शोह तैमूर और निसोर मोहम्मद उन विशेष व्यक्तियों में शामिल है जिन्होंने पिछली शताब्दी के 1920-1930 के दशकों में तजकों के राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था की स्थापना तथा एक स्वतंत्र तजकिस्तान के राजनीतिक रूपरेखा के निर्माण के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया है। हर राष्ट्र के इतिहास में ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जो निर्णायक क्षणों में ज्ञान और जागरूकता की नींद रखते हैं तथा राष्ट्रीय चेतना को जागृत करते हैं। ताजिक जनता के लिए 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ये महान और कठिन दायित्व शिक्षाविद, प्रमुख राजनेता तथा तजकिस्तान के प्रथम जन शिक्षा आयुक्त निसोर मोहम्मद ने अपने कंधों पर उठाया था। पिछली शताब्दी के 1920 के दशक में जब तजकिस्तान एक स्वायत्त गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ था, तब जनता की साक्षरता दर अत्यंत निम्न स्तर पर थी। निसोर मोहम्मद बहली भांति समझते थे कि शिक्षा और विज्ञान के बिना एक आधुनिक, स्वतंत्र और प्रगतिशील राज्य का निर्माण असंभव है। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से दुशांबे तथा अन्य क्षेत्रों में नई पद्धति के प्रथम विद्यालयों और शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना में योगदान दिया। उन्होंने व्यासकों की निरक्षरता दूर करने के

याद दिलाते कि आप रेडियो आवाजी ताजिकी हिंदी भाको सुन रहे हैं। इस समय हिंदी भाके कार्यक्रमों के दौरान आपके साथ है हम नुशफरीन उलीमवा और इस प्रोग्राम का निदेशक अबू मंसूर इस्माइल।

जी ये है कमली गाना जो धूम तीन फिल्म में सुनिधि चौहान द्वारा गाया गया आप गाने के बारे में विस्तार से बात करने से पहले इस मूवी के बारे में बात करेंगे

धूम तीन 2013 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे विजय कृष्ण आचार्य ने लिखा और निर्देशित किया और इसका निर्माण आदित्य चोपड़ा ने किया है जिन्होंने कहानी का सह लेखन किया था। इसमें आमिर खान, अभिषेक बच्चन, कैथरीना कैफ, उदय चोपड़ा, जैकी श्रॉफ और ताब्रेत बैठेल है। ये धूम श्रृंखला की अंतिम किस्म है और धूम 2004 और धूम 2 2006 की अगली कड़ी है। सन 2003 में धूम फिल्म रिलीज हुई थी जिसमें अभिषेक बच्चन, उदय चोपड़ा और जॉन अब्राहम मुख्य किरदार में थे। इसके अलावा विपाशा बासु और आयशा देओल भी फिल्म में खास किरदार निभा रही थी। इसके बाद साल 2006 में धूम 2 बनी जिसमें अभिषेक बच्चन, उदय चोपड़ा, इसके अलावा ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय मुख्य किरदार में नजर आए। 7 साल बाद धूम सीरीज की तीसरी फिल्म धूम 3 रिलीज हुई जिसमें एक बार फिर से अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा अपने उन्हीं पुराने दो किरदारों में नजर आए और आमिर खान ने इस बार फिल्म में विलेन का किरदार निभाया।

एक्शन फिल्म धूम तीन के कामली लिरिक्स को सुनिधि चौहान ने गाया है। अमिताभ भट्टाचार्य ने इसके लिरिक्स लिखे हैं और प्रीतम चक्रवर्ती ने इसकी धूम तैयार की है। कमली गाना पंजाबी गाना है। कमली के अलावा इस फिल्म में मलंग, तू ही जुनून, धूम मचाले धूम, बंदे हैं हम उसके गाने शामिल हैं जो काफी प्रसिद्ध हुए।

बता दें कि ये नोजिया का पहला हिंदी गाना नहीं है. नोजिया को न केवल ताजिकिस्तान में बल्कि हिंदुस्तान में भी अच्छी तरह जानते हैं और उसकी हिंदी और ताजिक गाने सुनते हैं. नोजिया हिंदुस्तानी कलाकारों से सहयोग करती है और अक्सर अपने फैंस के लिए हिंदी गाने पेश करती है.

प्यारे श्रोताओं, धूम तीन फिल्म के कमले गाने के हिंदी और ताजिक गायकों के गाने के वर्षन इस प्रोग्राम में आपके लिए पेश किया गया। इस समय आपके साथ है हम नुशो फरीन ओलीमावा और इस प्रोग्राम का निदेशक अबू मंसूरी इस्माइल। हमें आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। आप इस गाने को सुनकर आनंद लीजिए।

0: आवाज़ ताजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज़ ताजिक 4 बजे दुशंबे नगर और 4:30 बजे भारतीय समय के अनुसार 1 घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियां आठ भाषाओं ताजिकी, दारी, फारसी, रूसी, उज़्बेकी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।
1: नमस्ते प्यारे सुनने वालों, रेडियो आवाज़ ताजिकी हिंदी भाषा की जारी है और आपका स्वागत है।

हमारे प्रसारण में आप सुन सकते हैं स्थायी और विदेशी समाचार, ताजिकिस्तान के नीतिक सांस्कृतिक सामाजिक जीवन के बारे में दिलचस्प बयान, विश्लेषण विशेषज्ञों से बातचीत। आज की जिम्मेदारियां में इस प्रोग्राम के एडिटर रामजी और प्रोड्यूसर अबू मंसूर इस्माइल आपका समाचार विभाग में स्वागत करते हैं और हम मुख्य खबरों से शुरू करेंगे।

उपयोगी रिपोर्ट और बातचीत हर दिन रेडियो आवाज ताजिक पर हमारे साथ जुड़े रहे और संस्कृति साहित्य और रोजमर्रा की जिंदगी के अहम विषयों से अपडेट रहे। रेडियो आवाज ताजिक, दिलों की आवाज। प्रिय श्रोताओं, मैं आपका स्वागत करती हूं। कार्यक्रम के इस भाग में हम क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने में तजिकिस्तान और तजिकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति स्पष्टीकरण भूमिका के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्ताव करेंगे। हमारे साथ रहे। पूरे इंसानी इतिहास में शांति और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाने के लिए कई देशों को मुश्किल और लड़ाई झगड़े वाले दौर से गुजरता पड़ा है। इस प्रोसेस में अक्सर माइग्रेंट्स के साथ संघर्ष, अंदरूनी झगड़े और अलग अलग हितों के टकराव भी शामिल रहे हैं। आज की दुनिया के हालात तो तेजी से बदल रहे हैं और जिनमें सुपर पावर और इलाके के देशों के फायदे पूरे हो रहे हैं, उनमें शांति और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मुद्दा देशों के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए मुख्य वजहों में से एक है। तजिकिस्तान गणराज्य में राज्य बनाने का अनुभव दिखाता है कि शांति और राष्ट्रीय एकता पाने का प्रोसेस पॉलिटिकल इच्छा शक्ति, लोगों की समाज और समझदार लीडरशिप के मेल का नतीजा है। ये अनुभव साबित करता है कि सिर्फ कंस्ट्रक्टिव बातचीत और पॉलिटिकल बातचीत से ही गंभीर अंदरूनी संकटों से निपटा जा सकता है और टिकाऊ राज्य के नींव को मजबूत किया जा सकता है। इस प्रोसेस के एक जरूरी बात यह है कि ताजिक समाज एक सेंसिटिव ऐतिहासिक मोड़ पर नेशनल वैल्यूज और शांति पसंद परंपराओं पर भरोसा करके सिविल वॉर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा पाया। ये कामयाबी न सिर्फ नेशनल महत्व की थी बल्कि इसे इंटरनेशनल लेवल पर भी पॉलिटिकल जगरों को सुलझाने के लिए सफल उदाहरण के तौर पर पहचाना गया। शांति और राष्ट्रीय एकता पाने में तजिकिस्तान गणराज्य का अनुभव दिखाता है कि सही डिप्लोमेसी, राजनीतिक बातचीत और राष्ट्रीय समझदारी किसी देश को बर्बादी के कागार से खचा सकती है। ये प्रोसेस खासकर अफगानिस्तान में लंबे समय से चली आ रही अस्थिरता की तुलना में ये साफ करता है कि आपसी समाज की कमी और लगातार संघर्ष दशकों तक किसी देश के विकास में रुकावट डाल सकते है। इसलिए शांति सिर्फ एक राष्ट्रीय उपलब्धि ही नहीं है बल्कि एक सफल इंटरनेशनल उदाहरण भी है जो स्थिरता और तरक्की पक्का करने में बातचीत और सामुदायिक एकता के महत्व को दिखाता है। असल में एक मोर्दान ताजिक देश बनाने में तजिकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति मुहम्मद इमाली रहमों का रोल सच में बहुत बड़ा और ऐतिहासिक है। इस शानदार पर्सनैलिटी के लगातार कोशिशों और कड़ी मेहनत की वजह से ही तजिकिस्तान टूटने के खतरे से बच पाया। ताजिक देश का शांति पसंद मिशन इतिहास के सबसे मुश्किल दौर और अलग अलग सभ्यताओं के टकराव के दौरान भी हमेशा देश की स्थिरता और शांति के लिए मददगार रहा है। अनुभव बताता है कि लड़ाई बाहर करना आसान है लेकिन शांति वापस लाना बहुत मुश्किल है। ऐसी ही स्थिति अफगानिस्तान में भी देखी जा सकती है जो दशकों से हथियारों की लड़ाई से जूझ रहा है।

याद दिलाते कि आप रेडियो आवाजी ताजिकी हिंदी भाको सुन रहे हैं। इस समय हिंदी भाके कार्यक्रमों के दौरान आपके साथ है हम नुशफरीन उलीमवा और इस प्रोग्राम का निदेशक अबू मंसूर इस्माइल।

जी ये है कमली गाना जो धूम तीन फिल्म में सुनिधि चौहान द्वारा गाया गया। अब गाने के बारे में विस्तार से बात करने से पहले इस मूवी के बारे में बात करेंगे।

धूम तीन 2013 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे विजय कृष्ण आचार्या ने लिखा और निर्देशित किया और इसका निर्माण आदित्य चोपड़ा ने किया है जिन्होंने कहानी का सह लेखन किया था। इसमें आमिर खान, अभिषेक बच्चन, कैथरीना कैफ, उदय चोपड़ा, जैकी श्रॉफ और ताब्रेत बैठल है। ये धूम श्रृंखला की अंतिम किस्म है और धूम 2004 और धूम 2 2006 की अगली कड़ी है। सन 2003 में धूम फिल्म रिलीज हुई थी जिसमें अभिषेक बच्चन, उदय चोपड़ा और जॉन अब्राहम मुख्य किरदार में थे।

एक्शन फिल्म धूम तीन के कामली लिरिक्स को सुनिधि चौहान ने गाया है। अमिताभ भट्टाचार्य ने इसके लिरिक्स लिखे हैं और प्रीतम चक्रवर्ती ने इसकी धूम तैयार की है। कमली गाना पंजाबी गाना है। कमली के अलावा इस फिल्म में मलंग, तू ही जुनून, धूम मचाले धूम, बंदे हैं हम उसके गाने शामिल हैं जो काफी प्रसिद्ध हुए।

कमरे गाना में कैटरीना कैफ का नृत्य ने सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान आकर्षित किया, जिसके बाद हिंदुस्तान और दूसरे देशों के नृत्यकारों ने इस गाने में नृत्य का मंचन करने और कैटरीना के डांस को दोहराने शुरू किया। इस गाने को पेश करने से कई साल बीत गए, लेकिन अब ही विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभागी इस गाने को पेश करते हैं और विभिन्न देशों के गायक इस गाने को गाते हैं। इस तरह हमारे देश के मशहूर गायिका नोज़िया करोमाटोलो ने अपने एक कॉन्सर्ट में इस गाने को दर्शकों के लिए पेश किया, जो सभी हिंदी गानों के प्रेमियों के दिल में बस गया।

बता दें कि ये नोजिया का पहला हिंदी गाना नहीं है. नोजिया को न केवल ताजिकिस्तान में बल्कि हिंदुस्तान में भी अच्छी तरह जानते हैं और उसकी हिंदी और ताजिक गाने सुनते हैं. नोजिया हिंदुस्तानी कलाकारों से सहयोग करती है और अक्सर अपने फैंस के लिए हिंदी गाने पेश करती है.

प्यारे श्रोताओं, धूम तीन फिल्म के कमले गाने के हिंदी और ताजिक गायकों के गाने के वर्षन इस प्रोग्राम में आपके लिए पेश किया गया। इस समय आपके साथ है हम नुशोफरीन ओलीमावा और इस प्रोग्राम का निदेशक अबू मंसूरी इस्माइल। हमें आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। आप इस गाने को सुनकर आनंद लीजिए।